शामनी मुस्कुरा मजा आ गया संद सिन्हावा हितट सोचट गेनावा मंगे कलबल कारी कामरे एट वैटिच ओया के लासन हिनारेल मंगे हादवत गोड़ा क्लासन कला

0: मंदारम रहताई विनाडी 46 आए
1: वेलाव ओब वेत गेने एन्ने
2: सिंडरेला वागे मन्ना इन्ने माओ बेल गान्न कावरुत तनका
3: अपे दरुवन अपट वडा इदिरेन इतिन एगे खतावल यन्न एयट इदहरिन्न कमर्शियल क्रेडिट
4: वसर विसी एकक पुरा सत्य समगिन जनता विश्वासे दिनु नेट न्यूज

दिल हमको कभी समझाते हैं, हम दिल को कभी समझाता है। यानी गेंगे अब मुने गए इतने बह मट देंगे कटाई थी ना और यहाँ यानी गेंगे मुने गए इतने बह दे ये ने बह मट देंगे कटाई थी अगने मन क्यों है तो यहाँ यानी ना एक मटे अन्न बोलो अंगा मनाते हुए कोई तरह बात करती है ना वाद मटा इत यह अलग टे अन्न की अन्न इप्पा मागे हद बत इप्पा मटे अन्न है ती अग्न है